0: সানিমা রিলায়েন্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স খুলে রাজিও
1: मीठो सुगंध ले मेरो मन एकदम शांत हुन्छ प्रभु।
2: हप्ता को सात दिन सात छुट्टै सुगंध ले हर एक दिन को एउटा शुभ शुरुआत हुन्छ। मंगल दीप अर्पण 7-in-1 अगरबत्ती अब मात्र 30 रुपया मा।